सेवा सेंसर का होम अप्लायंस को करीब आकर्षक उपहार तथा कैश बैक एंट्री वॉशिंग मशीन 6 केजी एनियल सेमी ऑटोमेटिक 1 केजी एनियल एयर कंडीशनर

सदैव स्मरण रहोस्। सीमा मेची को होस या भूमि लिपुले को समान रूप में प्यारो छ। विपत्ति आए गए तर नेपालीलाई परास्त गर्न गाह्रो छ। जय नेपाल।

0: दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।